0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौदहवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना में पोप लियो चौदहवें ने ईश्वर की कृपा की प्रचुरता एवं हर ख्रिस्ते के मिशन को याद किया। वैटिकन स्थित सेंट पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 14 जून को पोप लियो चौदहवें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
0: आज का सुसमाचार पाठ हमारे लिए एक बड़ा उपहार लाता है, क्योंकि यह उन लोगों को शामिल करता जो इसे यीशु की दृष्टि से देखते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो इस नज़र के ध्यान की गवाही देती है, साथ ही हमें बतलाती है कि प्रभु क्या देखते हैं।
1: Leggiamo infatti che Cristo vedendo le folle ne sentì compassione.
0: हम पढ़ते हैं कि जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उन्हें उन पर तरस आया, क्योंकि वे परेशान और लाचार थे।
1: Fattosi nostro fratello, il figlio di Dio guarda la gente.
0: हमारे भाई बनकर ईश्वर के पुत्र लोगों को देखते हैं। वे मानव को देखते उस जुल्म को जो बोझ डालता और हिंसा जो शक्ति को कमजोर करती है। वे युद्ध के जख्मों और उपभोक्तावाद के खालीपन को देखते हैं, नकाबों में सिमटे चेहरों को देखते हैं, बुराई से टूटे परिवारों को और झूठे आदर्शों से गुमराह युवाओं को। यीशु देखते और प्यार करते हैं। वे हमारे लिए और हमसे प्यार करते हैं और दुख उठाते। उनकी तरस न केवल भाईचारे की नज़दीकी दिखाती बल्कि छुटकारा पाने की उनकी इच्छा को भी व्यक्त करती है। संत पापा ने कहा,
1: Alien fatti conosce il nostro cuore.
0: वे हमारे हृदय जानते हैं और उसके लिए चिंता करते हैं। बहुत सारे लोगों को बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह देखते हुए यीशु खुद को भले चरवाहे के रूप में सबके लिए समर्पित करते हैं और फसल के मालिक के रूप में दुनिया के खेतों में काम करने वालों को भेजते हैं। उनका क्या काम है? उन्हें दुख में पड़े लोगों को ईश्वर का आराम देना है। जहाँ दुख है वहाँ दया दिखानी है, जहाँ तकलीफ है वहाँ उम्मीद जगानी है, जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ विश्वास दिखाना है। सुसमाचार पाठ आगे 12 शिष्यों के नाम की सूची प्रस्तुत करता है। पोप ने कहा, वे चेले हैं जिन्हें प्रेरित बनाया गया, यानी मिशनरी और प्रचारक। उनमें से सबसे पहले सिमोन का नाम आता है, जिससे पेत्रुस कहा जाता है, लेकिन हमें अंत में यूदा इस्कारियोती का नाम भी मिलता है, जो हमें याद दिलाता है कि यीशु के पीछे कोई भी चल सकता है और उन्हें धोखा दे सकता है। फिर भी सुसमाचार पाठ सभी के लिए एक जीवित और सच्चा वचन बना हुआ है। सदियों पार करने वाला सुसमाचार एक ही है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। संत पापा ने कहा कि यह सचमुच पास है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त में ईश्वर हर पुरुष एवं महिला, लोगों एवं देश के पास आते हैं। जब इस सुसमाचार की घोषणा की जाती है और इसे जिया जाता है तो बुराई एक बीमारी की तरह खत्म हो जाती है, जैसे रात सुबह में बदल जाती और जैसे मृत्यु पर पुनर्जीवित ख्रिस्त ने जीत हासिल की है। इस तरह यीशु की नज़र वास्तविकता को बदल देती है। प्यार से भरी उनकी पहल नए लोगों को कलीसिया में जन्म देती है, जिसे प्रेरितों के मिशन को जारी रखने के लिए बुलाया गया है।
1: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
0: तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यीशु का वरदान पूरी तरह से मुफ्त है, क्योंकि इसकी कीमत हर माप से ज्यादा है। इससे पाना या खरीदना नामुमकिन है। यह कृपा ईश्वर की दया का सुंदर नाम है, जो हमें जहाँ कहीं भी हो ढूंढती है, ताकि हमें अपनी ओर खींचे। इसलिए यीशु कहते हैं, फसल के मालिक से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। पोप ने विश्वासों को संबोधित कर कहा, प्यारे मित्रों, सुसमाचार प्रचार का काम ईश्वर के वरदान से आता है, जो मसीह में दुनिया के लिए माफी, कमजोर और गरीब लोगों की सेवा और न्याय के प्रति समर्पण बन जाता है। अतः संत पापा ने कुंवारी मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria piena di grazia.
0: आइए हम कृपा से पूर्ण कुंवारी मरियम की मदद मांगे ताकि हम खुशी और हिम्मत के साथ उस मिशन का प्रत्युत्तर दे सकेंगे जिसके लिए यीशु हमें बुलाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरिति का आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने स्पेन के अपने प्रेरित की यात्रा के लिए आभार प्रकट किया एवं अन्य घटनाओं की याद की। उन्होंने कहा,
1: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna.
0: सबसे पहले मैं स्पेन में मुझे प्रेरित यात्रा की इजाजत देने के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं स्पेन के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बड़े जोश एवं गर्म जोशी के साथ मेरा स्वागत किया। मैं खासकर महामहिम राजा का शुक्रगुजार हूँ। मैं धर्मदक्षों और उन सभी समुदायों का जहाँ मैं गया एवं स्पेन की पूरी कलीसिया का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद संत पापा ने नए धन्यों की याद की। उन्होंने कहा, मैं कुछ नए धन्यों की भी याद करना चाहूँगा। मोराविया धर्म प्रांत के पुरोहित क्वाला ड्राबोला और जॉन बोला और जॉन स्वियर्क और पोलैंड के उनके 8 साथी सलेशन सभी को शहीद के रूप में धन्य घोषित किया गया जो ख्रिस्त के प्रति अपनी निष्ठा के कारण तानाशाही सरकारों के जुल्म के शिकार हुए। पोप ने रोमन मिशनरी पुरोहित नजारेनो लैंसियोटी को भी याद किया जिन्हें ब्राजील के माटो ग्रोसो में धन्य घोषित किया गया। वे भी एक शहीद थे जिन्होंने सुसमाचार के नाम पर सबसे गरीब लोगों की रक्षा की। संत पापा ने कहा, इन साहसी गवाहों की मिसाल एवं मध्यस्थता पुरोहितों एवं पूरी कलीसिया के मिशन को मजबूत बनाए। तत्पश्चात संत पापा ने फिलीपींस में भूकंप पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा,
1: Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto.
0: मैं फिलीपींस के लोगों को जो हाल ही में एक जोरदार भूकंप से प्रभावित हुए हैं अपना सामीप्य व्यक्त करता हूँ। मैं मरने वालों और उनके परिवारों घायलों एवं इस आपदा की वजह से परेशान सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए पोप ने कहा, और अब मैं आप सभी रोम एवं अलग अलग देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन करता हूँ। मैं ख्रिस्त के शिष्यों एवं कार्तिक कलीसिया के बीच बातचीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय कमीशन के सदस्यों का अभिवादन करता हूँ। आपके विचार हमें एकता में बढ़ने में मदद करें। पोप ने अमेरिका के तीर्थयात्रियों को खासकर न्यूजर्सी और मियामी फ्लोरिडा में कैरोल्टन स्कूल ऑफ द सेक्रेट हार्ट के विश्वासियों का अभिवादन किया और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: E auguro a tutti una buona domenica!

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने आज 15 जून को वाटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में यूरोप में रहने वाले सीरो मलंकरा विश्वासियों के पहले सम्मेलन के प्रतिभागियों से मुलाकात की। अपने स्वागत के शुरुआती शब्दों में संत पापा ने उनके मेजर महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल बसिलियोस मार्क क्लेमिस को शुभकामनाएं दी। आज वे अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं और अगस्त में अपनी धर्माध्यक्षीय सिल्वर जुबली मनाएंगे और कॉन्फ्रेंस के आयोजक धर्माध्यक्ष कुरियाकोस मार ओस्थातियोस अपोस्टोलिक विजिटर को खास बधाई दी। संत पापा लियो ने सीरो मलंकरा कलीसिया की खासियतों के बारे में बताते हुए कहा कि सीरो मलंकरा कलीसिया, जिसने अपने मूल्यों को फैलाकर सुसमाचार की रोशनी फैलाई है और जो 1930 के दशक में भारत के तमिलनाडु में जीवंत कैथलिक की समर्पित धर्म बहनों की वजह से फले फूले। संत पापा ने अपने भाषण में याद दिलाया कि सीरो मलंकरा कलीसिया, जो अपनी 100वीं सालगिरह की तैयारी में आध्यात्मिक बदलाव की एक गहरी कई साल की यात्रा पर निकल रही है, एक साल में अपने पदानुक्रम की 95वीं सालगिरह मनाएगी, जिसे संत पापा पियूस 11वें ने प्रेरितिक संविधान क्रिस्टो पास्टोरम प्रिंसिपी 11 जून 1932 को बनाया था। उन्होंने आदरणीय मार इवानियूस द्वारा दिए गए उदाहरण को याद किया। संत पापा के लिए त्रिवेंद्रम के पहले सीरो मलंकरा मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष यीशु के दिल के अनुसार एक सच्चे चरवाहे, जिन्होंने मार थियोफिलोस के साथ मिलकर कई पुरोहितों और बेथानी के धर्म समाज के धर्म संघियों और धर्म बहनों सहित कई विश्वासियों को क्रिस्तीय विश्वास को जीने के लिए एक जरूरी हिस्से के तौर पर प्रेरित पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ कलीसिया की संगति को फिर से खोजने के लिए प्रेरित किया, और जो एक युवा पुरोहित से केरल में अपने क्रिस्तीय समुदाय की सीमाओं से बहुत आगे देख पाए। मार इवानियोस समझते थे कि प्रेरित संत थॉमस के उपदेश और शहादत से भारत में बोए गए अच्छे बीज की तेजी को वापस लाना जरूरी था, और वे मिशनरी काम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक अच्छे जीवन और सच्ची उदार सेवा के जरिए भी दिखाना चाहते थे। संत पापा ने धर्माध्यक्षों की धर्म सभा और सीरो मलंकरा कलीसिया की धार्मिक संस्थानों को भारत में हाल ही में बनाए गए धर्म प्रांतीय इलाकों, खासकर खड़की के संत एफ्रेम और गुड़गांव के संत जॉन क्रिसोस्तम के बड़े धर्म प्रांत के लिए खुद को समर्पित करने हेतु प्रोत्साहित किया। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को न्यूयॉर्क के संयुक्त यहूदी अपील संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि उनका संघ वैश्विक यहूदी परोपकार के एक साधन के रूप में कार्य करता है, जो न्यूयॉर्क, इसराइल और 70 से भी अधिक देशों में गरीबों, शरणार्थियों, बुजुर्गों और विकलांग लोगों सहित कमजोर आबादी को मानवीय सहायता और सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। संत पापा ने कहा कि ये प्रयास मानव गरिमा और भाईचारे की साफ पहचान दिखाती है, जो पूरे मानव विकास के लिए कलीसिया के अपनी प्रतिबद्धता और अपने पड़ोसी से प्यार करने की पुकार से मेल खाती है। उन्होंने याद दिलाया कि ख्रिस्तियों और यहूदियों के आम इतिहास और अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ में उनके आध्यात्मिक वंश को देखते हुए इस साझा प्रतिबद्धता का खास मतलब है। संत पापा ने 1965 के द्वितीय वाटिकन महासभा के लैंडमार्क डॉक्यूमेंट गैर ख्रिस्तीय धर्मों के साथ कलीसिया के रिश्ते पर नोस्त्रा एताते घोषणा की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इसने मिलने जुलने, सम्मान और आध्यात्मिक मेहमान नवाजी का एक नया रास्ता खोला और दूसरी बातों के साथ साथ इस सच्चाई को पक्का किया कि हम एक ही मानव परिवार के हैं और नस्ल, रंग, जीवन की हालात और धर्म के आधार पर यहूदी विरोधी भावना और सभी तरह के भेदभाव या परेशानी की निंदा की। एक ऐसी दुनिया में जो अभी भी विभाजन और संघर्ष से घायल है, संत पापा लियो ने जोर देकर कहा,
इसने हमें आम भलाई के लिए सहयोग की दिशा में पिछली गलत फहमियों से आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इस भावना के साथ संत पापा ने गरीबों, हाशिए पर रहने वाले और कमजोर लोगों की सेवा को पवित्रता का सामना करने के साधन के रूप में बताया। यह देखते हुए कि उनके माध्यम से दिव्य आवाज हमसे बात करना जारी रखती है, संत पापा ने अपना संबोधन समाप्त करते हुए उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने, नफरत और असहिष्णुता का मुकाबला करने और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम करने के उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। और संत पापा लियो 14वें ने 15 नवंबर 2026 को मनाए जाने वाले गरीबों के 10वें विश्व दिवस के लिए अपना संदेश जारी किया। भजन 14, प्रभु गरीबों की पनाह है पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा कि ये यरूशलेम में मंदिर के विनाश के एक नाटकीय समय के दौरान लिखे गए थे, जब लोगों ने ईश्वर की उपस्थिति से दूर महसूस किया और भौतिक एवं नैतिक तकलीफ का अनुभव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। रविवार 13 जून पदुआ के संत अंतोनी के पर्व दिवस पर जारी अपने संदेश में संत पापा ने कहा कि भजन 14 हर पीढ़ी से बात करता रहता है। वे कहते हैं कि शुरुआती आयतें उन लोगों के बीच के अंतर को दिखाती हैं जो समझदारी से जीते हैं और जो जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनसे बड़ा कुछ नहीं है। संत पापा ने चेतावनी दी कि गरीबों की आवाज को अक्सर बहुत ही सूक्ष्म रणनीति के माध्यम से चुप करा दिया जाता है, जबकि डिजिटल दुनिया पूर्वाग्रह को खराब कर रही है और उदासीनता को मजबूत कर रही है। संत पापा कहते हैं कि गरीब अक्सर यह पहचानने में दूसरों की तुलना में अधिक सक्षम होते हैं कि क्या आवश्यक है, क्योंकि वे आवश्यक चीजों पर जीते हैं। इस कारण से वे कहते हैं कि वे विशेष रूप से ईश्वर को अपने आश्रय के रूप में पहचानने और उसके न्याय पर अपनी आशा रखने में सक्षम हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौदहवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना में पोप लियो चौदहवें ने ईश्वर की कृपा की प्रचुरता एवं हर ख्रिस्ते के मिशन को याद किया। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 14 जून को पोप लियो चौदहवें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
0: आज का सुसमाचार पाठ हमारे लिए एक बड़ा उपहार लाता है, क्योंकि यह उन लोगों को शामिल करता जो इसे यीशु की दृष्टि से देखते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो इस नज़र के ध्यान की गवाही देती है, साथ ही हमें बतलाती है कि प्रभु क्या देखते हैं।
1: Leggiamo infatti che Cristo vedendo le folle ne sentì compassione.
0: हम पढ़ते हैं कि जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उन्हें उन पर तरस आया, क्योंकि वे परेशान और लाचार थे।
1: Fattosi nostro fratello, il figlio di Dio guarda la gente.
0: हमारे भाई बनकर ईश्वर के पुत्र लोगों को देखते हैं। वे मानव को देखते उस जुल्म को जो बोझ डालता और हिंसा जो शक्ति को कमजोर करती है। वे युद्ध के जख्मों और उपभोक्तावाद के खालीपन को देखते हैं, नकाबों में सिमटे चेहरों को देखते हैं, बुराई से टूटे परिवारों को और झूठे आदर्शों से गुमराह युवाओं को। यीशु देखते और प्यार करते हैं। वे हमारे लिए और हमसे प्यार करते हैं और दुख उठाते। उनकी तरस न केवल भाईचारे की नज़दीकी दिखाती बल्कि छुटकारा पाने की उनकी इच्छा को भी व्यक्त करती है। संत पापा ने कहा,
1: E se ne prende cura.
0: वे हमारे हृदय जानते हैं और उसके लिए चिंता करते हैं। बहुत सारे लोगों को बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह देखते हुए यीशु खुद को भले चरवाहे के रूप में सबके लिए समर्पित करते हैं और फसल के मालिक के रूप में दुनिया के खेतों में काम करने वालों को भेजते हैं।
1: Qual è il lavoro che devono svolgere?
0: उनका क्या काम है? उन्हें दुख में पड़े लोगों को ईश्वर का आराम देना है। जहाँ दुख है वहाँ दया दिखानी है, जहाँ तकलीफ है वहाँ उम्मीद जगानी है, जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ विश्वास दिखाना है। सुसमाचार पाठ आगे 12 शिष्यों के नाम की सूची प्रस्तुत करता है। पोप ने कहा, वे चेले हैं जिन्हें प्रेरित बनाया गया, यानी मिशनरी और प्रचारक। उनमें से सबसे पहले सिमोन का नाम आता है, जिससे पेत्रुस कहा जाता है, लेकिन हमें अंत में यूदा इस्कारियोती का नाम भी मिलता है, जो हमें याद दिलाता है कि यीशु के पीछे कोई भी चल सकता है और उन्हें धोखा दे सकता है। फिर भी सुसमाचार पाठ सभी के लिए एक जीवित और सच्चा वचन बना हुआ है। सदियों पार करने वाला सुसमाचार एक ही है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। संत पापा ने कहा कि यह सचमुच पास है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त में ईश्वर हर पुरुष एवं महिला, लोगों एवं देश के पास आते हैं। जब इस सुसमाचार की घोषणा की जाती है और इसे जिया जाता है तो बुराई एक बीमारी की तरह खत्म हो जाती है, जैसे रात सुबह में बदल जाती और जैसे मृत्यु पर पुनर्जीवित ख्रिस्त ने जीत हासिल की है। इस तरह यीशु की नज़र वास्तविकता को बदल देती है। प्यार से भरी उनकी पहल नए लोगों को कलीसिया में जन्म देती है, जिसे प्रेरितों के मिशन को जारी रखने के लिए बुलाया गया है।
1: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
0: तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यीशु का वरदान पूरी तरह से मुफ्त है, क्योंकि इसकी कीमत हर माप से ज्यादा है। इससे पाना या खरीदना नामुमकिन है। यह कृपा ईश्वर की दया का सुंदर नाम है, जो हमें जहाँ कहीं भी हो ढूंढती है, ताकि हमें अपनी ओर खींचे। इसलिए यीशु कहते हैं, फसल के मालिक से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। पोप ने विश्वासों को संबोधित कर कहा, प्यारे मित्रों, सुसमाचार प्रचार का काम ईश्वर के वरदान से आता है, जो मसीह में दुनिया के लिए माफी, कमजोर और गरीब लोगों की सेवा और न्याय के प्रति समर्पण बन जाता है। अतः संत पापा ने कुंवारी मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria piena di grazia.
0: आइए हम कृपा से पूर्ण कुंवारी मरियम की मदद मांगें ताकि हम खुशी और हिम्मत के साथ उस मिशन का प्रत्युत्तर दे सकेंगे जिसके लिए यीशु हमें बुलाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने स्पेन के अपने प्रेरित यात्रा के लिए आभार प्रकट किया एवं अन्य घटनाओं की याद की। उन्होंने कहा,
1: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna.
0: सबसे पहले मैं स्पेन में मुझे प्रेरित यात्रा की इजाजत देने के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं स्पेन के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बड़े जोश एवं गर्म जोशी के साथ मेरा स्वागत किया। मैं खासकर महामहिम राजा का शुक्रगुजार हूँ। मैं धर्माध्यक्षों और उन सभी समुदायों का जहाँ मैं गया एवं स्पेन की पूरी कलीसिया का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद संत पापा ने नए धन्यों की याद की। उन्होंने कहा, मैं कुछ नए धन्यों की भी याद करना चाहूँगा। मोराविया धर्म प्रांत के पुरोहित क्वाला ड्राबोला और जॉन बोला और जॉन स्वियर्क और पोलैंड के उनके 8 साथी सलेशन सभी को शहीद के रूप में धन्य घोषित किया गया जो ख्रिस्त के प्रति अपनी निष्ठा के कारण तानाशाही सरकारों के जुल्म के शिकार हुए। पोप ने रोमन मिशनरी पुरोहित नजरेनो लैंसियोटी को भी याद किया जिन्हें ब्राजील के माटो ग्रोसो में धन्य घोषित किया गया। वे भी एक शहीद थे जिन्होंने सुसमाचार के नाम पर सबसे गरीब लोगों की रक्षा की। संत पापा ने कहा, इन साहसी गवाहों की मिसाल एवं मध्यस्थता पुरोहितों एवं पूरी कलीसिया के मिशन को मजबूत बनाए। तत्पश्चात संत पापा ने फिलीपींस में भूकंप पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा,
1: Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto.
0: मैं फिलीपींस के लोगों को जो हाल ही में एक जोरदार भूकंप से प्रभावित हुए हैं अपना सामीप्य व्यक्त करता हूँ। मैं मरने वालों और उनके परिवारों घायलों एवं इस आपदा की वजह से परेशान सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए पोप ने कहा, और अब मैं आप सभी रोम एवं अलग अलग देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन करता हूँ। मैं ख्रिस्त के शिष्यों एवं कार्तिक कलीसिया के बीच बातचीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय कमीशन के सदस्यों का अभिवादन करता हूँ। आपके विचार हमें एकता में बढ़ने में मदद करें। पोप ने अमेरिका के तीर्थयात्रियों को खासकर न्यू जर्सी और मियामी फ्लोरिडा में कैरोल्टन स्कूल ऑफ द सेक्रेट हार्ट के विश्वासियों का अभिवादन किया और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: E auguro a tutti una buona domenica!

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने आज 15 जून को वाटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में यूरोप में रहने वाले सीरो मलंकरा विश्वासियों के पहले सम्मेलन के प्रतिभागियों से मुलाकात की। अपने स्वागत के शुरुआती शब्दों में संत पापा ने उनके मेजर महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल बसिलियोस मार्क क्लेमिस को शुभकामनाएं दी। आज वे अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं और अगस्त में अपनी धर्माध्यक्षीय सिल्वर जुबली मनाएंगे और कॉन्फ्रेंस के आयोजक धर्माध्यक्ष कुरियाकोस मार ओस्थातियोस अपोस्टोलिक विजिटर को खास बधाई दी। संत पापा लियो ने सीरो मलंकरा कलीसिया की खासियतों के बारे में बताते हुए कहा कि सीरो मलंकरा कलीसिया, जिसने अपने मूल्यों को फैलाकर सुसमाचार की रोशनी फैलाई है और जो 1930 के दशक में भारत के तमिलनाडु में जीवंत कैथोलिक की समर्पित धर्म बहनों की वजह से फले फूले। संत पापा ने अपने भाषण में याद दिलाया कि सीरो मलंकरा कलीसिया, जो अपनी 100वीं सालगिरह की तैयारी में आध्यात्मिक बदलाव की एक गहरी कई साल की यात्रा पर निकल रही है, एक साल में अपने पदानुक्रम की 95वीं सालगिरह मनाएगी, जिसे संत पापा पियूस 11वें ने प्रेरितिक संविधान क्रिस्टो पास्टोरम प्रिंसिपी 11 जून 1932 को बनाया था। उन्होंने आदरणीय मार इवानियूस द्वारा दिए गए उदाहरण को याद किया। संत पापा के लिए त्रिवेंद्रम के पहले सीरो मलंकरा मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष येसु के दिल के अनुसार एक सच्चे चरवाहे, जिन्होंने मार थियोफिलोस के साथ मिलकर कई पुरोहितों और बेथानी के धर्म समाज के धर्म संघियों और धर्म बहनों सहित कई विश्वासियों को क्रिस्तीय विश्वास को जीने के लिए एक जरूरी हिस्से के तौर पर प्रेरित पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ कलीसिया की संगति को फिर से खोजने के लिए प्रेरित किया और जो एक युवा पुरोहित से केरल में अपने क्रिस्तीय समुदाय की सीमाओं से बहुत आगे देख पाए। मार इवानियोस समझते थे कि प्रेरित संत थॉमस के उपदेश और शहादत से भारत में बोए गए अच्छे बीज की तेजी को वापस लाना जरूरी था और वे मिशनरी काम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक अच्छे जीवन और सच्ची उदार सेवा के जरिए भी दिखाना चाहते थे। संत पापा ने धर्माध्यक्षों की धर्म सभा और सीरो मलंकरा कलीसिया की धार्मिक संस्थानों को भारत में हाल ही में बनाए गए धर्म प्रांतीय इलाकों, खासकर खड़की के संत एफ्रेम और गुड़गांव के संत जॉन क्रिसोस्टम के बड़े धर्म प्रांत के लिए खुद को समर्पित करने हेतु प्रोत्साहित किया। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को न्यूयॉर्क के संयुक्त यहूदी अपील संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि उनका संघ वैश्विक यहूदी परोपकार के एक साधन के रूप में कार्य करता है, जो न्यूयॉर्क, इसराइल और 70 से भी अधिक देशों में गरीबों, शरणार्थियों, बुजुर्गों और विकलांग लोगों सहित कमजोर आबादी को मानवीय सहायता और सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। संत पापा ने कहा कि ये प्रयास मानव गरिमा और भाईचारे की साफ पहचान दिखाती है, जो पूरे मानव विकास के लिए कलीसिया के अपनी प्रतिबद्धता और अपने पड़ोसी से प्यार करने की पुकार से मेल खाती है। उन्होंने याद दिलाया कि ख्रिस्तियों और यहूदियों के आम इतिहास और अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ में उनके आध्यात्मिक वंश को देखते हुए इस साझा प्रतिबद्धता का खास मतलब है। संत पापा ने 1965 के द्वितीय वाटिकन महासभा के लैंडमार्क डॉक्यूमेंट गैर ख्रिस्तीय धर्मों के साथ कलीसिया के रिश्ते पर नोस्त्रा एताते घोषणा की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इसने मिलने जुलने, सम्मान और आध्यात्मिक मेहमान नवाजी का एक नया रास्ता खोला और दूसरी बातों के साथ साथ इस सच्चाई को पक्का किया कि हम एक ही मानव परिवार के हैं और नस्ल, रंग, जीवन की हालात और धर्म के आधार पर यहूदी विरोधी भावना और सभी तरह के भेदभाव या परेशानी की निंदा की। एक ऐसी दुनिया में जो अभी भी विभाजन और संघर्ष से घायल है, संत पापा लियो ने जोर देकर कहा, इसने हमें आम भलाई के लिए सहयोग की दिशा में
पिछली गलत फहमियों से आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इस भावना के साथ संत पापा ने गरीबों, हाशिए पर रहने वाले और कमजोर लोगों की सेवा को पवित्रता का सामना करने के साधन के रूप में बताया। यह देखते हुए कि उनके माध्यम से दिव्य आवाज हमसे बात करना जारी रखती है, संत पापा ने अपना संबोधन समाप्त करते हुए उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने, नफरत और असहिष्णुता का मुकाबला करने और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम करने के उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। और संत पापा लियो चौदहवें ने 15 नवंबर 2026 को मनाए जाने वाले गरीबों के 10वें विश्व दिवस के लिए अपना संदेश जारी किया। भजन 14, प्रभु गरीबों की पनाह है पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा कि ये यरूशलेम में मंदिर के विनाश के एक नाटकीय समय के दौरान लिखे गए थे, जब लोगों ने ईश्वर की उपस्थिति से दूर महसूस किया और भौतिक एवं नैतिक तकलीफ का अनुभव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। रविवार 13 जून पदुआ के संत अंतोनी के पर्व दिवस पर जारी अपने संदेश में संत पापा ने कहा कि भजन 14 हर पीढ़ी से बात करता रहता है। वे कहते हैं कि शुरुआती आयतें उन लोगों के बीच के अंतर को दिखाती हैं जो समझदारी से जीते हैं और जो जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनसे बड़ा कुछ नहीं है। संत पापा ने चेतावनी दी कि गरीबों की आवाज को अक्सर बहुत ही सूक्ष्म रणनीति के माध्यम से चुप करा दिया जाता है, जबकि डिजिटल दुनिया पूर्वाग्रह को खराब कर रही है और उदासीनता को मजबूत कर रही है। संत पापा कहते हैं कि गरीब अक्सर यह पहचानने में दूसरों की तुलना में अधिक सक्षम होते हैं कि क्या आवश्यक है, क्योंकि वे आवश्यक चीजों पर जीते हैं। इस कारण से वे कहते हैं कि वे विशेष रूप से ईश्वर को अपने आश्रय के रूप में पहचानने और उसके न्याय पर अपनी आशा रखने में सक्षम हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: जीवित और मृत का न्याय करने फिर आएंगे।
1: मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
2: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
3: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
3: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
2: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
4: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु येसु की प्राण पीड़ा।
2: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
3: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु येसु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है,
0: मतलब हम दुख में ना कुड़कुड़ाएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे,

0: के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो का पुरोहितों को दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें ने पवित्र हृदय के महोत्सव पुरोहितों के विश्व पवित्रीकरण दिवस के अवसर पर पुरोहितों के नाम 12 जून को एक संदेश प्रेषित किया। संत पापा ने पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ पर अपने संदेश को व्यवस्थित करते हुए कहा, यह दिव्य बुलाहट सदियों से गूंजती आ रही है। यह आज भी हर विश्वासियों के लिए ठोस रूप से ध्वनित होती है और विशेष रूप से हम पुरोहित भाइयों के लिए। यह बहुत से विकल्पों में से एक नहीं है और ना ही कोई अमूर्त आदर्श ही, क्योंकि यह हर व्यक्ति के जीवन की पहचान में समाहित है जो पुनर्जीवित के जीवन में अपने को साझा करने की चाह रखते हैं। ईश्वर हमें स्वयं अपनी पवित्रता में शामिल होने को निमंत्रण देते हैं। जब वे हमें अपनी तरह पवित्र होने के लिए बुलाते हैं, वे हमें उस मार्ग को दिखलाते हैं जो हमें उनके हृदय की शैली का अनुसरण करने को निमंत्रण देता है। ईश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। जिस पवित्रता की वे हमसे मांग करते हैं एक विश्वासपूर्ण समर्पण है, जहां हम अपने को पवित्र आत्मा से परिवर्तित होने देते हैं। हम सभी ईश्वर की पवित्रता को अपने में वहन करने हेतु बुलाए जाते हैं, लेकिन हम इस निधि को मिट्टी के पात्र में वहन करते हैं। हम अपने में अपूर्ण और सीमित हैं, बहुधा कमजोर और चिंतित तथा वहीं कई बार घायल। कैसे एक संवेदनशील हृदय इस बड़ी बुलाहट का प्रत्युत्तर दे सकता है? पुरोहित इस तनाव में जीता है, फिर भी वह अपने में इस बात को पहचाने कि वह यीशु की खुली बगल में अपने लिए शांति को प्राप्त करता है। संत पापा ने कहा, यीशु के संग हमारे हृदय की एकता एक वह अनुभूति नहीं है जो कुछ एक चुने गए लोगों के लिए सुरक्षित रखी जाती हो, बल्कि यह एक संस्कार है, यूखरिस्तीय यात्रा जो हमारे रोज दिन के जीवन में सामने आती है। प्रिय भाइयों, संत पापा लियो ने कहा, अपने अभिषेक के द्वारा हम यीशु के समानुरूप बन जाते हैं, फिर भी हमें चाहिए कि हम अपने को प्रतिदिन की प्रार्थना, ख्रिस्त्याग, उनके वचनों पर चिंतन और अपने भाई बहनों की नम्रता में सेवा करते हुए उनकी कृपा से अपने को नवीन करें। आइए हम सारी चीजों में ख्रिस्त से अपने को संयुक्त करें। वे चीजें जिन्हें हम करते हैं और वे जो हमारे रोज दिन के जीवन में होती हैं, तब वह पवित्रता जिसे हमने अलग अलग कोशिशों से बेकार में खोजा है, कृपा के प्रत्युत्तर में पोषित और हमारे लिए परिवर्तन में अभिव्यक्त होगी। वास्तव में हमारी मानवता अलग अलग हिस्सों में बंटी नहीं है। प्रार्थना, प्रेरिताई, हमारे संबंध, चिंताएं, खुशियां और असफलताएं, यहाँ तक कि हमारा समय या प्रेम जो हमें व्यर्थ प्रतीत होता है, हमारे लिए वे विशेष स्थल बनते हैं जहाँ ईश्वर हमें अपने को और अपने अनंत प्रेम को व्यक्त करते हैं। संत पापा ने कहा, एक पुरोहित जो ईमानदार, सीधा साधा और शुद्ध हृदय वाला है, अपने में कार्य के माध्यम प्रार्थना में करुणावान, संकट के समयों में और स्वयं अपने लिए आनंद का उपहार होता है। विश्व को उन पुरोहितों की जरूरत है जो अपने को वचनों या कार्यक्रमों से अधिक देते हैं। यह एक जीवित मेल मिलाप हृदय की मांग करती है जो ख्रिस्त के पवित्रता की मीठी खुशबू को बिखेरती है। एक पुरोहित का जीवन जो यीशु ख्रिस्त के हृदय के समानुरूप और स्थिर होता है अपने में एकता, शांति और करुणा की विश्वसनीय निशानी है। इस भांति युद्ध और विभाजन के ऐसे समय में हमें शांति और भले चरवाहे की कोमलता के साक्षी होने की मांग की जाती है जो इस बात को जानते हैं कि बिखरे हुओं को कैसे समेटना और घायलों की चंगाई कैसे करना है। हमारी उत्साह बेचैनी भरी नहीं है बल्कि यह प्रेम की अपार खुशी अर्थात परमानंद से प्रवाहित होती है जिसमें हम खुलापन, उपहार और मिलन को पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि पवित्रता का प्रत्युत्तर हमारे लिए बहुत अधिक तपस्या या सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति में निहित नहीं है। यद्यपि वे हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन यह हमारे लिए विश्वास में ख्रिस्त के प्रेम से संयुक्त रहना है जो बेधित हृदय के द्वारा प्रकट किया गया है। प्रेरित संत योहन हमें क्रूसित यीशु के बेधित बगल पर चिंतन करने का निमंत्रण देते हैं जिसमें ईश्वर हमें निश्चित रूप में यह दिखलाते हैं कि पवित्रता क्या है। यह अपहुंच दूरी या तटस्थ पूर्णता नहीं है बल्कि एक प्रेम जो अपने को घायल होने तक देता है जिसके कारण वह हमारे लिए करुणा और जीवन का एक स्रोत बनता है। यीशु का पवित्र हृदय हमारे लिए ईश्वर के अथाह प्रेम की अनुकरणीय निशानी है। यह एक शक्तिशाली प्रेम है क्योंकि इसमें विशेषकर संवेदनशीलता और इसमें हमारी उदासी को कृपा और दुखों को आशा में बदलने की योग्यता है। संत पापा ने कहा कि इस भांति पवित्र हृदय वह स्थल है जहां पवित्रता को हम निकटता और कोमलता के रूप में अभिव्यक्त पाते हैं। पुरोहित की पवित्रता अतः नम्रता और साहसिक निकटता में सन्निहित है जो सारे लोगों के लिए सारी चीजें बन जाता और भेड़ शाला के द्वार को खुला रखता है जिससे बहुत से लोग प्रवेश कर उसमें अपने लिए चारागाह और विश्राम प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि हम ईश्वर में उस संबंध के लिए बुलाए गए हैं जो हमें दूसरों से दूर नहीं करता है बल्कि हमें हर एक के निकट लाता जहां हम धैर्य और नम्र हृदय निकटता के योग्य, करुणावान और सुनने के योग्य बनते हैं। हम नहीं जीते बल्कि यीशु हम सबों में जीते हैं। ऐसी पवित्रता तटस्थता में नहीं जिया जा सकता है। संत पापा ने कहा कि आप पुरोहिताई के अपने भ्रातृत्व का लुफ्त उठाएं, एक दूसरे की खोज करें, एक दूसरे को सुने और सहयोग करें। पुरोहित जो अपने को अलग करता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पुरोहित जो अपने भाइयों के संग चलता वह विकास करता है। संत अगुस्टिन इसकी याद दिलाते हुए हमें कहते हैं, हम अपने को अंधेरे में पाने से कैसे दूर करें? अपने भाइयों को प्रेम करने के द्वारा। हमारे भाइयों को प्रेम करने का प्रमाण क्या है कि हम एकता को नहीं तोड़ते और प्रेम के कार्यों का अभ्यास करते हैं। संत पापा ने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ कि भावना को यीशु ख्रिस्त के बेधित हृदय के सामने आप रोज दिन नवीन करें, अपने को उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित करें जिससे आप उनके लोगों को उसी भांति प्रेम कर सकेंगे जैसे उन्होंने किया। और अर्श के संत की बातों को याद दिलाते हुए संत पापा ने कहा, पुरोहिताई यीशु ख्रिस्त के हृदय का प्रेम है। यह एक प्रतिज्ञा और गारंटी है कि यदि हम अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं हमारा कुछ नहीं खोएगा। संत पापा ने कहा, मैं आप सबों को हर एक को कुंवारी मरियम को समर्पित करता हूँ जो पुरोहितों की माता हैं, वह जिन्होंने अपने पुत्र के हृदय के रहस्य को अपने में वहन किया। हमें भी ख्रिस्त के हृदय को जो दुनिया के मुक्ति दाता हैं जो हम में धड़कता है अपने में सजीव बनाए रखने में मदद करें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। परमतम पीठ ने आपसा फ्रतेलो सोले फाउंडेशन एवं अचिया के साथ एक एग्री वोल्टेक प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के जरिए वैटिकन सिटी स्टेट की ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति करना है। वैटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट, परमतम पीठ के विरासत के प्रशासन, आपसा फ्रतेलो सोले फाउंडेशन और अचिया, जो इटली की जानी मानी ऊर्जा एवं जल उपयोगिताओं में से एक है, ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता का मकसद रोम के निकट संत मरिया दी गैलेरिया के अतिरिक्त क्षेत्र में एक अग्रिवोल्टेक प्लांट के विकास को आगे बढ़ाना है। 10 जून को हस्ताक्षरित इस समझौते में परियोजना की प्लानिंग एवं उसे लागू करने में सहयोग के लिए एक ढांचा बनाया गया है, जिसे वैटिकन गवर्नरेट, आपसा एवं फ्रतेलो सोले फाउंडेशन के जरिए विकसित करना चाहता है। यह पहल पोप लियो चौदहवें द्वारा 1 जून को जारी एक दस्तावेज के जरिए फ्रतेलो सोले फाउंडेशन की स्थापना के बाद की गई है। फाउंडेशन को इस परियोजना की देखरेख का काम सौंपा गया है, जिसका मकसद न केवल रोम के पास संत मरिया दी गैलेरिया में मौजूद वैटिकन रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर के लिए बिजली देना है, बल्कि वैटिकन सिटी स्टेट की ऊर्जा आवश्यकताओं में भी योगदान देना है। एग्रीवोल्टेक प्लांट पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक विश्व पत्र लाउदातो सी, प्रेरितिक प्रबोधन लाउदातो देयम और मोतु प्रोप्रियो फ्रतेलो सोले में बताए गए पर्यावरण के सिद्धांतों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को कृषि कार्यों के साथ जोड़ेगा। परियोजना की तकनीकी मुश्किलों को देखते हुए अचिया ऊर्जा, पर्यावरण, पानी और कृषि विभाग में विशेषज्ञों को देकर इस पहल का समर्थन करेगा। परियोजना के लिए कानूनी ढांचा इटली एवं वैटिकन सिटी के बीच संत मरिया दी गैलेरिया में एक एग्रीवोल्टेक प्लांट के बारे में हुए समझौते के द्वारा बनाया गया था, जिस पर 31 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किया गया था और इटली ने अप्रैल 2026 में इसे मंजूरी दी थी। पोप लियो चौदहवें विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक का निमंत्रण स्वीकार करते हुए सोमवार 22 जून को विश्व खाद्य कार्यक्रम के रोम स्थित मुख्यालय जाएंगे, ताकि निदेशकों के वार्षिक सत्र में हिस्सा लेने वालों के साथ साथ कर्मचारियों एवं उनके परिवारों से मिल सकें। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। यह दुनिया का एक बड़ा मानवीय संगठन है, जो आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाने के साथ साथ भुखमरी मिटाने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में करीब 318 मिलियन लोग भुखमरी के शिकार हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम उनमें से करीब 124 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन प्रदान कर रहा है। 10वें ऑस्ट्रियन विश्व शिखर सम्मेलन के लिए प्रेषित एक वीडियो संदेश में पोप लियो चौदहवें ने विश्वास, आशा एवं प्रेम को एक ऐसी विषय वस्तु के रूप में बताया है, जो जलवायु संकट पर चिंतन करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक, नैतिक और आर्थिक मामलों को भी छूते हैं। पोप लियो चौदहवें ने 16 जून को जारी एक वीडियो संदेश में कहा, जलवायु संकट से असरदार तरीके से निपटने के लिए हमें अपने समाज की बुनियाद में मौजूद सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, जैसे सभी मनुष्यों की समान इज्जत एवं मानव अधिकारों की अहमियत। पोप लियो ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा पर हाल ही में प्रकाशित अपने प्रेरितिक विषय पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास का जिक्र करते हुए कहा, पर्यावरण संकट कोई अकेला मुद्दा नहीं है, बल्कि आज के सामाजिक आर्थिक संकट का पारिस्थितिक पहलू है। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे विश्वास, उम्मीद एवं प्यार तीन ऐसे विषय हैं जो पर्यावरण संकट से निपटने के तरीके पर सोचने में मदद कर सकते हैं। पोप का वीडियो संदेश 10वें ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट को दिया गया, जो वियना में होने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका मकसद जलवायु संकट से अलग समाधान और विचार विमर्श के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है। यह 16 जून को हो रहा है और इसे श्वार्ज़नेगर जलवायु पहल आयोजित कर रहा है, जिससे अभिनेता और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने लॉन्च किया था। पोप लियो ने याद किया कि कैसे उन्होंने मैनिफिका ह्यूमैनिटास में सभी इंसानों की समान गरिमा और बुनियादी मानव अधिकारों के महत्व पर जोर दिया है। पोप ने कहा,
ये जरूरी निजी और सामाजिक मामले जलवायु संकट से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो जैसा कि मैंने कहा बड़े सामाजिक आर्थिक संकट का एक रूप है और एक अहम रूप है। असल में जब तक इन पर ध्यान दिया जाता, पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी भी तकनीकी समाधान को अपना मनचाहा मकसद हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बारे में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाधान निकालते एवं हल ढूंढते समय सबसे गरीब एवं पर्यावरण के नुकसान के सबसे ज्यादा खतरे में रहने वाले लोगों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पोपलियो ने बतलाया कि ये बहुआयामी दृष्टिकोण जो हमारे समाज पर असर डालने वाले अलग अलग मुद्दों के आपस में जुड़े होने को मानता है, विश्वास के दृष्टिकोण से जुड़ा है। उन्होंने समझाया, जो लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है और यह अपने आप में अच्छी है, उन्हें सृष्टि की देखभाल करने की और बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि यह उनके विश्वास की जरूरत है। उन्होंने पोप फ्रांसिस के 2015 के प्रेरित विश्व पत्र लौदातो सी का जिक्र करते हुए कहा, ईश्वर की सृष्टि की रक्षा करने की अपनी बुलाहट को जीना सदाचारी जीवन जीने के लिए जरूरी है। पोप लियो ने यह भी बताया कि कैसे कई अलग अलग धर्म सृष्टि को एक ईश्वरीय उपहार मानते हैं और जीवन की पवित्रता पर जोर देते हैं। इस तरह धार्मिक विश्वास जीवन की रक्षा करने और प्रकृति की देखभाल करने की पूरी इच्छा को मजबूत करती है। अंत में पोप ने प्यार विषय वस्तु एवं हमारे पर्यावरण की देखभाल की एक सच्ची संस्कृति के लिए महत्व पर जोर दिया, जिसमें पोप फ्रांसिस द्वारा कहे गए नागरिक और राजनीतिक प्यार शामिल है। पोप ने लौदातो सी का फिर से जिक्र करते हुए कहा, समाज को ज्यादा मानव के ज्यादा लायक बनाने के लिए सामाजिक जीवन में प्यार को नई अहमियत देनी होगी। पोप ने यह उम्मीद जताते हुए अपनी बात समाप्त की कि सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोग देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देंगे और प्यार की सभ्यता में सहयोग करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो का पुरोहितों को दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें ने पवित्र हृदय के महोत्सव पुरोहितों के विश्व पवित्रीकरण दिवस के अवसर पर पुरोहितों के नाम 12 जून को एक संदेश प्रेषित किया। संत पापा ने पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ पर अपने संदेश को व्यवस्थित करते हुए कहा, यह दिव्य बुलाहट सदियों से गूंजती आ रही है। यह आज भी हर विश्वासियों के लिए ठोस रूप से ध्वनित होती है और विशेष रूप से हम पुरोहित भाइयों के लिए। यह बहुत से विकल्पों में से एक नहीं है और ना ही कोई अमूर्त आदर्श ही, क्योंकि यह हर व्यक्ति के जीवन की पहचान में समाहित है जो पुनर्जीवित के जीवन में अपने को साझा करने की चाह रखते हैं। ईश्वर हमें स्वयं अपनी पवित्रता में शामिल होने को निमंत्रण देते हैं। जब वे हमें अपनी तरह पवित्र होने के लिए बुलाते हैं, वे हमें उस मार्ग को दिखलाते हैं जो हमें उनके हृदय की शैली का अनुसरण करने को निमंत्रण देता है। ईश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। जिस पवित्रता की वे हमसे मांग करते हैं एक विश्वासपूर्ण समर्पण है, जहां हम अपने को पवित्र आत्मा से परिवर्तित होने देते हैं। हम सभी ईश्वर की पवित्रता को अपने में वहन करने हेतु बुलाए जाते हैं, लेकिन हम इस निधि को मिट्टी के पात्र में वहन करते हैं। हम अपने में अपूर्ण और सीमित हैं, बहुधा कमजोर और चिंतित तथा वहीं कई बार घायल। कैसे एक संवेदनशील हृदय इस बड़ी बुलाहट का प्रत्युत्तर दे सकता है? पुरोहित इस तनाव में जीता है, फिर भी वह अपने में इस बात को पहचाने कि वह यीशु की खुली बगल में अपने लिए शांति को प्राप्त करता है। संत पापा ने कहा, यीशु के संग हमारे हृदय की एकता एक वह अनुभूति नहीं है जो कुछ एक चुने गए लोगों के लिए सुरक्षित रखी जाती हो, बल्कि यह एक संस्कार है, यूखरिस्तीय यात्रा जो हमारे रोज दिन के जीवन में सामने आती है। प्रिय भाइयों, संत पापा लियो ने कहा, अपने अभिषेक के द्वारा हम यीशु के समानुरूप बन जाते हैं, फिर भी हमें चाहिए कि हम अपने को प्रतिदिन की प्रार्थना, ख्रिस्तियाग, उनके वचनों पर चिंतन और अपने भाई बहनों की नम्रता में सेवा करते हुए उनकी कृपा से अपने को नवीन करें। आइए हम सारी चीजों में ख्रिस्त से अपने को संयुक्त करें। वे चीजें जिन्हें हम करते हैं और वे जो हमारे रोज दिन के जीवन में होती हैं, तब वह पवित्रता जिसे हमने अलग अलग कोशिशों से बेकार में खोजा है, कृपा के प्रत्युत्तर में पोषित और हमारे लिए परिवर्तन में अभिव्यक्त होगी। वास्तव में हमारी मानवता अलग अलग हिस्सों में बंटी नहीं है। प्रार्थना, प्रेरिताई, हमारे संबंध, चिंताएं, खुशियां और असफलताएं, यहाँ तक कि हमारा समय या प्रेम जो हमें व्यर्थ प्रतीत होता है, हमारे लिए वे विशेष स्थल बनते हैं जहाँ ईश्वर हमें अपने को और अपने अनंत प्रेम को व्यक्त करते हैं। संत पापा ने कहा, एक पुरोहित जो ईमानदार, सीधा साधा और शुद्ध हृदय वाला है, अपने में कार्य के माध्यम प्रार्थना में करुणावान, संकट के समयों में और स्वयं अपने लिए आनंद का उपहार होता है। विश्व को उन पुरोहितों की जरूरत है जो अपने को वचनों या कार्यक्रमों से अधिक देते हैं। यह एक जीवित मेल मिलाप हृदय की मांग करती है जो ख्रीस्त के पवित्रता की मीठी खुशबू को बिखेरती है। एक पुरोहित का जीवन जो यीशु ख्रीस्त के हृदय के समानुरूप और स्थिर होता है अपने में एकता, शांति और करुणा की विश्वसनीय निशानी है। इस भांति युद्ध और विभाजन के ऐसे समय में हमें शांति और भले चरवाहे की कोमलता के साक्षी होने की मांग की जाती है जो इस बात को जानते हैं कि बिखरे हुओं को कैसे समेटना और घायलों की चंगाई कैसे करना है। हमारी उत्साह बेचैनी भरी नहीं है बल्कि यह प्रेम की अपार खुशी अर्थात परमानंद से प्रवाहित होती है जिसमें हम खुलापन, उपहार और मिलन को पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि पवित्रता का प्रत्युत्तर हमारे लिए बहुत अधिक तपस्या या सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति में निहित नहीं है। यद्यपि वे हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन यह हमारे लिए विश्वास में ख्रीस्त के प्रेम से संयुक्त रहना है जो बेधित हृदय के द्वारा प्रकट किया गया है। प्रेरित संत योहन हमें क्रूसित यीशु के बेधित बगल पर चिंतन करने का निमंत्रण देते हैं जिसमें ईश्वर हमें निश्चित रूप में यह दिखलाते हैं कि पवित्रता क्या है। यह अपहुंच दूरी या तटस्थ पूर्णता नहीं है बल्कि एक प्रेम जो अपने को घायल होने तक देता है जिसके कारण वह हमारे लिए करुणा और जीवन का एक स्रोत बनता है। यीशु का पवित्र हृदय हमारे लिए ईश्वर के अथाह प्रेम की अनुकरणीय निशानी है। यह एक शक्तिशाली प्रेम है क्योंकि इसमें विशेषकर संवेदनशीलता और इसमें हमारी उदासी को कृपा और दुखों को आशा में बदलने की योग्यता है। संत पापा ने कहा कि इस भांति पवित्र हृदय वह स्थल है जहां पवित्रता को हम निकटता और कोमलता के रूप में अभिव्यक्त पाते हैं। पुरोहित की पवित्रता अतः नम्रता और साहसिक निकटता में सन्निहित है जो सारे लोगों के लिए सारी चीजें बन जाता और भेड़शाला के द्वार को खुला रखता है जिससे बहुत से लोग प्रवेश कर उसमें अपने लिए चारागाह और विश्राम प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि हम ईश्वर में उस संबंध के लिए बुलाए गए हैं जो हमें दूसरों से दूर नहीं करता है बल्कि हमें हर एक के निकट लाता जहां हम धैर्य और नम्र हृदय निकटता के योग्य, करुणावान और सुनने के योग्य बनते हैं। हम नहीं जीते बल्कि यीशु हम सबों में जीते हैं। ऐसी पवित्रता तटस्थता में नहीं जिया जा सकता है। संत पापा ने कहा कि आप पुरोहिताई के अपने भ्रातृत्व का लुफ्त उठाएं, एक दूसरे की खोज करें, एक दूसरे को सुने और सहयोग करें। पुरोहित जो अपने को अलग करता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पुरोहित जो अपने भाइयों के संग चलता वह विकास करता है। संत अगुस्टिन इसकी याद दिलाते हुए हमें कहते हैं, हम अपने को अंधेरे में पाने से कैसे दूर करें? अपने भाइयों को प्रेम करने के द्वारा। हमारे भाइयों को प्रेम करने का प्रमाण क्या है कि हम एकता को नहीं तोड़ते और प्रेम के कार्यों का अभ्यास करते हैं। संत पापा ने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ कि भावना को यीशु ख्रीस्त के बेधित हृदय के सामने आप रोज दिन नवीन करें, अपने को उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित करें जिससे आप उनके लोगों को उसी भांति प्रेम कर सकेंगे जैसे उन्होंने किया। और अर्श के संत की बातों को याद दिलाते हुए संत पापा ने कहा, पुरोहिताई यीशु ख्रीस्त के हृदय का प्रेम है। यह एक प्रतिज्ञा और गारंटी है कि यदि हम अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं हमारा कुछ नहीं खोएगा। संत पापा ने कहा, मैं आप सबों को हर एक को कुंवारी मरियम को समर्पित करता हूँ जो पुरोहितों की माता हैं, वह जिन्होंने अपने पुत्र के हृदय के रहस्य को अपने में वहन किया। हमें भी ख्रीस्त के हृदय को जो दुनिया के मुक्ति दाता हैं जो हम में धड़कता है अपने में सजीव बनाए रखने में मदद करें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। परमतम पीठ ने आपसा फ्रतिलो सोले फाउंडेशन एवं अचिया के साथ एक एग्रीवोल्टेक प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के जरिए वैटिकन सिटी स्टेट की ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति करना है। वैटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट परमतम पीठ के विरासत के प्रशासन आपसा फ्रतिलो सोले फाउंडेशन और अचिया, जो इटली की जानी मानी ऊर्जा जल उपयोगिताओं में से एक है, ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता का मकसद रोम के निकट संत मरिया दी गैलेरिया के अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्र में एक एग्रीवोल्टेक प्लांट के विकास को आगे बढ़ाना है। 10 जून को हस्ताक्षरित इस समझौते में परियोजना की प्लानिंग एवं उसे लागू करने में सहयोग के लिए एक ढांचा बनाया गया है, जिसे वैटिकन गवर्नरेट आपसा एवं फ्रतिलो सोले फाउंडेशन के जरिए विकसित करना चाहता है। यह पहल पोप लियो चौथवें द्वारा 1 जून को जारी एक दस्तावेज के जरिए फ्रतिलो सोले फाउंडेशन की स्थापना के बाद की गई है। फाउंडेशन को इस परियोजना की देखरेख का काम सौंपा गया है, जिसका मकसद न केवल रोम के पास संत मरिया दी गैलेरिया में मौजूद वैटिकन रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर के लिए बिजली देना है, बल्कि वैटिकन सिटी स्टेट की ऊर्जा आवश्यकताओं में भी योगदान देना है। एग्रीवोल्टेक प्लांट पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक विश्व पत्र लाउदातो सी, प्रेरितिक प्रबोधन लाउदातो देयम और मोतु प्रोप्रियो फ्रतिलो सोले में बताए गए पर्यावरण के सिद्धांतों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को कृषि कार्यों के साथ जोड़ेगा। परियोजना की तकनीकी मुश्किलों को देखते हुए अचिया ऊर्जा, पर्यावरण, पानी और कृषि विभाग में विशेषज्ञों को देकर इस पहल का समर्थन करेगा। परियोजना के लिए कानूनी ढांचा इटली एवं वैटिकन सिटी के बीच संत मरिया दी गैलेरिया में एक एग्रीवोल्टेक प्लांट के बारे में हुए समझौते के द्वारा बनाया गया था, जिस पर 31 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किया गया था और इटली ने अप्रैल 2026 में इसे मंजूरी दी थी। पोप लियो चौदहवें विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक का निमंत्रण स्वीकार करते हुए सोमवार 22 जून को विश्व खाद्य कार्यक्रम के रोम स्थित मुख्यालय जाएंगे, ताकि निदेशकों के वार्षिक सत्र में हिस्सा लेने वालों के साथ साथ कर्मचारियों एवं उनके परिवारों से मिल सकें। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। यह दुनिया का एक बड़ा मानवीय संगठन है, जो आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाने के साथ साथ भुखमरी मिटाने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में करीब 318 मिलियन लोग भुखमरी के शिकार हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम उनमें से करीब 124 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन प्रदान कर रहा है। 10वें ऑस्ट्रियन विश्व शिखर सम्मेलन के लिए प्रेषित एक वीडियो संदेश में पोप लियो चौदहवें ने विश्वास, आशा एवं प्रेम को एक ऐसी विषय वस्तु के रूप में बताया है, जो जलवायु संकट पर चिंतन करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक, नैतिक और आर्थिक मामलों को भी छूते हैं। पोप लियो चौदहवें ने 16 जून को जारी एक वीडियो संदेश में कहा, जलवायु संकट से असरदार तरीके से निपटने के लिए हमें अपने समाज की बुनियाद में मौजूद सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, जैसे सभी मनुष्यों की समान इज्जत एवं मानवाधिकारों की अहमियत। पोप लियो ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा पर हाल ही में प्रकाशित अपने प्रेरितिक विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का जिक्र करते हुए कहा, पर्यावरण संकट कोई अकेला मुद्दा नहीं है, बल्कि आज के सामाजिक आर्थिक संकट का पारिस्थितिक पहलू है। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे विश्वास, उम्मीद एवं प्यार तीन ऐसे विषय हैं जो पर्यावरण संकट से निपटने के तरीके पर सोचने में मदद कर सकते हैं। पोप का वीडियो संदेश 10वें ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट को दिया गया, जो वियना में होने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका मकसद जलवायु संकट से अलग समाधान और विचार विमर्श के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है। यह 16 जून को हो रहा है और इसे श्वार्ज़नेगर जलवायु पहल आयोजित कर रहा है, जिससे अभिनेता और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने लॉन्च किया था। पोप लियो ने याद किया कि कैसे उन्होंने मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में सभी इंसानों की समान गरिमा और बुनियादी मानवाधिकारों के महत्व पर जोर दिया है। पोप ने कहा,
ये जरूरी निजी और सामाजिक मामले जलवायु संकट से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो जैसा कि मैंने कहा बड़े सामाजिक आर्थिक संकट का एक रूप है और एक अहम रूप है। असल में जब तक इन पर ध्यान दिया जाता, पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी भी तकनीकी समाधान को अपना मनचाहा मकसद हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बारे में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाधान निकालते एवं हल ढूंढते समय सबसे गरीब एवं पर्यावरण के नुकसान के सबसे ज्यादा खतरे में रहने वाले लोगों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पोपलियो ने बतलाया कि ये बहुआयामी दृष्टिकोण जो हमारे समाज पर असर डालने वाले अलग अलग मुद्दों के आपस में जुड़े होने को मानता है, विश्वास के दृष्टिकोण से जुड़ा है। उन्होंने समझाया, जो लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है और यह अपने आप में अच्छी है, उन्हें सृष्टि की देखभाल करने की और बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि यह उनके विश्वास की जरूरत है। उन्होंने पोप फ्रांसिस के 2015 के प्रेरित विश्व पत्र लौदातो सी का जिक्र करते हुए कहा, ईश्वर की सृष्टि की रक्षा करने की अपनी बुलाहट को जीना सदाचारी जीवन जीने के लिए जरूरी है। पोप लियो ने यह भी बताया कि कैसे कई अलग अलग धर्म सृष्टि को एक ईश्वरीय उपहार मानते हैं और जीवन की पवित्रता पर जोर देते हैं। इस तरह धार्मिक विश्वास जीवन की रक्षा करने और प्रकृति की देखभाल करने की पूरी इच्छा को मजबूत करती है। अंत में पोप ने प्यार विषय वस्तु एवं हमारे पर्यावरण की देखभाल की एक सच्ची संस्कृति के लिए महत्व पर जोर दिया, जिसमें पोप फ्रांसिस द्वारा कहे गए नागरिक और राजनीतिक प्यार शामिल है। पोप ने लौदातो सी का फिर से जिक्र करते हुए कहा, समाज को ज्यादा मानव के ज्यादा लायक बनाने के लिए सामाजिक जीवन में प्यार को नई अहमियत देनी होगी। पोप ने यह उम्मीद जताते हुए अपनी बात समाप्त की कि सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोग देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देंगे और प्यार की सभ्यता में सहयोग करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।